यहाँ के दो हजार रिक्रेशन और रिचार्ज कार्रवाल ने यहाँ को अच्छे 30 अक्टूबर यहाँ कसली स्तंदो बहतांदो वेर यहाँ को अच्छे रहा यहाँ की समिता अंदो कोंदो कुछ दो जब पुपसरी आखों बे बागवे शिपुपुस अन्य न कुमिर सालों रे यहाँ सब कोई शिशा शांजावा ये दिन चिया ये बागवे शिश कोन्यो कोन्यो जोशी जोशी इंडिया रे तो यहाँ की समिता अंदो 306 सुर लासे संता मारिया रा तो कोंदो का सोर्डेनांदो 805325 0385 nada, no es nada, 6 nada, 7 es cuajado.